0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए, ये बिंदु स्कूल अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये? कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग, ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान ग्यारह, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलें, आउटडोर खेल, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़ना। बारह, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में एक दो घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। तेरह, संतुलित और घर का खाना, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने। 17, दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय, घर पर बोर्ड गेम, किताबें पढ़ना, साइकिलिंग। 18, नींद का पूरा समय, रात 9-10 बजे सोना और सुबह जल्दी उठना। 19, योग और प्राणायाम, स्कूल में रोज 10-15 मिनट योग, शरीर और मन दोनों मजबूत। 20, माता पिता का सक्रिय रोल, सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चे के साथ पूरा समय बिताएं। 21, पुस्तक पढ़ने की आदत, स्क्रीन की जगह किताबें, कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 22, समूह गतिविधियां, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, कला क्लब, अकेलेपन को दूर करें। 23, स्कूल और घर का सहयोग, अभिभावक शिक्षक मीटिंग में शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा। 24, आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं को सराहे, गलतियों से सीखें। 25, प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ लगाना, पार्क में समय बिताना, पक्षी पशु देखना, मन शांत और मजबूत होता है। ऋषि मीणा कहते हैं, दोस्तों आज का बालक कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कल हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और खुशहाल होंगे। याद रखें, बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारी जीवन शैली उन्हें कमजोर बनाती है। डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से ये संदेश जनहित में जारी किया गया है। अपने विचार हमें बताएं, कॉल करें या मैसेज करें। रेडियो डीएस, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ समाज।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: ये नाम क्या है आपका?
4: शिवम।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गरम कोपड़े का सोनू।
3: कौन सा?
5: एसटीएफ डिपार्टमेंट।
6: आज सारा शास्त्र का क्लियर हुआ मैडम।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए।
2: हेलो
3: जी मैम, क्या आपका
2: क्या नाम?
3: कहाँ से बात कर रही?
2: गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
3: कौन सा खाना सुनना चाहोगे मैम?
2: तेरे बिना जीना सजा हो गया।
3: तेरे बिना जीना सजा हो गया
2: जी।
3: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश करूँगा।
2: थैंक यू।
3: यू वेलकम।

0: ये तो आदमी खराब भरा हो।
1: हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते सर।
1: हाँ जी, नाम बताइए आपका।
0: मंजूर अली खान मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना मैम वो है हमारी अधूरी कहानी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम.
1: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
0: भाई माधोपुर से नैनी का बोल रही हूँ. जाना है, बहुत दिन हुए देखे तुझे मेरे यार.
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: शुक्रिया मैम.

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते पलक जी।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना तो सुपर हिट लाए हैं।
1: हाँ जी बताइए।
0: पलक बंद कर लूं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें,

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS Science Academy नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीणा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए, ये बिंदु स्कूल अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये? कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान ग्यारह, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेले, आउटडोर खेल, फुटबॉल कबड्डी दौड़ना। बारह, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में एक दो घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। तेरह, संतुलित और घर का खाना, फल सब्जियां दूध अंडा अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने। 17, दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय, घर पर बोर्ड गेम, किताबें पढ़ना, साइकिलिंग। 18, नींद का पूरा समय, रात 9-10 बजे सोना और सुबह जल्दी उठना। 19, योग और प्राणायाम, स्कूल में रोज 10-15 मिनट योग, शरीर और मन दोनों मजबूत। 20, माता पिता का सक्रिय रोल, सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चे के साथ पूरा समय बिताएं। 21, पुस्तक पढ़ने की आदत, स्क्रीन की जगह किताबें, कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 22, समूह गतिविधियां, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, कला क्लब, अकेलेपन को दूर करें। 23, स्कूल और घर का सहयोग, अभिभावक शिक्षक मीटिंग में शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा। 24, आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं को सराहे, गलतियों से सीखें। 25, प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ लगाना, पार्क में समय बिताना, पक्षी पशु देखना, मन शांत और मजबूत होता है। ऋषि मीणा कहते हैं, दोस्तों आज का बालक कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कल हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और खुशहाल होंगे। याद रखिए, बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारी जीवन शैली उन्हें कमजोर बनाती है। डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से ये संदेश जनहित में जारी किया गया है। अपने विचार हमें बताएं, कॉल करें या मैसेज करें। रेडियो डीएस, स्वस्थ बच्चा।

0: हो?
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रिंस मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? दुनापुर सिटी, नशिया कॉलोनी।
1: कौन सा सुनना चाहोगे सर?
0: ख्याल।
1: वो कैसा सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: ठंडेराम गुजर बोल रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल तेरे नाम से धड़कता है ये क्या है मुझे पता
0: नहीं। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे सर?
1: गंगापुर, राजपुर। राजपुर में
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं, आज शर्मा किस किस को बताऊं, एक तो कैसे मैं सुनाऊं आप?
0: ओके सर, सुना लें आपकी फरमाइश करिएगा
1: मैडम आप।
0: हेलो।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कॉलेज गाड़ी।
0: वो कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: सुना रहे हैं।
1: हेलो
2: छोरा तो घना एंडी है।
0: हेलो हेलो
3: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: सुशीला।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: करौली फाटक।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: चलो मदन मोहन के द्वार, मदन मोहन ने बुलाया है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अरुण।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: जब तुम बुलाओ नदिया किनारे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मजबूर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो

0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: गंगाधर सावंकर।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कुंडलवाड़ी, कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: हाँ जी कौन सा
0: गाना सुनने दो? भोले वो भोले।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6।
2: जी
3: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: फिल्म का नाम है 20 साल बाद और गाने के बोल हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:06 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मैम रोहित है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं यहाँ से आपसे से बात।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैम मैं बदमाशी बदमाश तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

0: अभी से
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कर्मचारी कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ले ले राम राम।
1: ओके सर सुना।
2: लंबड़दार

0: हेलो नमस्ते दीदी।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना कश्मीर से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मोहम्मद अजीज की आवाज में सुनाइए। मैं
1: कौन सा गाना?

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विजय कुमार पटनाल में।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मिर्जापुर गंगा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ए दोस्ती मेरा प्यार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: नमस्कार, कैसी तबीयत है?
1: सर ठीक है।
0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा प्यार वो है चंबर कर
2: भी तुम जुदा।

0: इला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से।
1: जी सर, और कैसे हो, वहाँ का मौसम कैसा चल रहा है?
0: बहना जी रंगीला है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दो दिन हुए हैं पानी नहीं पड़ता, बाकी 100% बारिश हो चुकी है और मूंगफली की बुवाई हो चुकी है।
1: तो बढ़िया है, अच्छी बात है, इस टाइम मूंगफलियों का और ज्यादा सीजन चल रहा है। हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: गाना बहना जी मूवी का नाम रहेगा मुकदमा।
1: हाँ जी, गाने के बोल।
0: रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, ये वाला गीत।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: लाइनें भी कहेंगे बहन।
1: हाँ जी बताइए।
0: परछाई आपकी हमारे दिल में है, यादें आपकी हमारी आंखों में है, कैसे भुलाएं हम रेडियो डीएस को, क्योंकि आपका प्यार हमारी सांसों में।

0: हेलो
1: यस
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: मेरा नाम विक्रम।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: है आपकी फरमाइश करिएगा ना।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: देवांगर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: सही आ रहा
0: हो, फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बंगलापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पागल।
2: 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन आरामा ते देख के वही हवामा क्यों आज वधियां सावन। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज हो जावे।

0: हेलो मैडम
1: सर नमस्ते सर नाम
0: नमस्कार नाम नाम सत्यनारायण मैडम
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर
0: करोली फाटक
1: कौन सा गाना
0: दूध की डेयरी तेरा साथ है कितना प्यारा
1: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश
0: तेरा हाँ

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: लोकेश मीणा।
1: कहाँ से बात कर?
0: गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: सत्य लाल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना। हेलो।

0: हेलो,
1: मेरा विक्रम हरिजन था।
0: कौन से बात कर रहे हो?
1: बात कर रहा।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज भीगले मेरी बरसात में, सावन की बरसात।
0: कौन सा सर?
1: आज भीगले मेरी सावन की बरसात में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: ले जज्बात है उस पे तेरा साथ है, सिर्फ तेरे ही लिए मेरी चाहत की सौगात है।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: क्या है सर आपका? सर कौन, कहां से बात कर रहे
2: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: हनी सिंह का चार बोतल कोट के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
3: Chat, beat the beat, beat, beat.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:10 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ नोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी फलक। तो कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई अक्षरा शर्मा जी के। अक्षरा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better building.
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर आईएएस या आरएएस राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS Academy नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: श्रोताओ, मैं आपकी दोस्त प्रियंका गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा जो विशेष कार्यक्रम है, महिला जगत में महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है महिलाओं में पोषण जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली। दोस्तों, आप जानते हो, बदलती जीवन शैली और बढ़ती भाग दौड़ के बीच स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और जब बात महिलाओं की हो तो यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती है, लेकिन अक्सर वही अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती है। वे परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करती है, लेकिन खुद समय पर खाना नहीं खाती हैं, ना ही वो समय पर आराम करती हैं। और अगर उनसे बोला जाए कि चलो आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगी और धीरे धीरे अपनी बीमारी को बढ़ा लेती हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं तो एक जो सवाल है वो हमारे सामने आता है कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। अब ये समस्या पैदा हुई थी सही पोषण ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सही पोषण क्या है। सही पोषण का मतलब केवल ज़्यादा खाना नहीं होता। संतुलित भोजन में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट। यानी जो हम खाना ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ों का होना आवश्यक होता है, तभी हमें पूरा पोषण मिल पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य। आजकल लोग घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फास्ट फूड स्वादिष्ट जरूर लगता है, लेकिन यह शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। महिलाओं को चाहिए कि वे घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही खाए और उसको ही प्राथमिकता दे। अब कभी कभार ये होता है कि जो महिलाएँ हैं वो काम में इतनी बिजी हो जाती है, घर के कामों में, बच्चों में, कि वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, और मॉर्निंग से ही उनके काम शुरू हो जाते हैं और वो सुबह का जो नाश्ता है उसको लेना भूल जाती हैं। तो महिलाओं के लिए सुबह का नाश्ता ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कई महिलाएँ काम की जल्दी में नाश्ता छोड़ देती हैं, लेकिन जो सुबह का नाश्ता होता है वो उन महिलाओं को पूरे दिन की ऊर्जा देता है। यदि आप नाश्ता नहीं करोगे तो वो आपको पूरे दिन की जो भी एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी। और अगर यदि जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो अगर पौष्टिक होता है तो जो हमारा शरीर है वो दिन भर सक्रिय रहता है, यानी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। अब नाश्ता भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार महिलाओं में मैंने देखा है कि महिलाएं मोटापे से ज़्यादा गिर जाती हैं। तो टॉपिक है हमारा मोटापा और महिलाओं का स्वास्थ्य। आज कई महिलाएं मोटापे की समस्या से परेशान हैं। गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी से यही मोटापा बढ़ता है। यानी जो इसका मुख्य कारण है वो है गलत खानपान, फास्ट फूड, मार्केट का खाना, ये सब इसके मेन कारण होते हैं। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हृदय जैसी बीमारियां हैं उनके खतरे को बढ़ाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, तो हमें उन्हें ही खानी चाहिए, ना कि हम फास्ट फूड की तरफ भागे। अब नेक्स्ट है कि हमने ये डाइटिंग की जो आदत गलत हो जाती है उसका क्या सोल्यूशन है। कुछ महिलाएं होती हैं वजन कम करने के लिए खाना कम कर देती हैं कि नहीं, मुझे तो वजन कम करना है, मैं आज से खाना ही नहीं खाऊंगी, या फिर एक अपना पीरियड बना लेती हैं कि नहीं, मुझे तो आज दिन भर में यही खाना है, या फिर भूखी रहती हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो होता है वो तरीका वो शरीर को कमज़ोर बना देता है। और जो सही तरीका है वो है संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम। हम अपने खाने में जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे खाने को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। और अगर उसके साथ हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें कि पानी और शरीर की ऊर्जा, यानी हमारी शरीर के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारी थकान होगी, सिर दर्द होगा और हमें कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। तो हमारे शरीर के लिए पानी भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है मानसिक तनाव और महिलाओं की ज़िंदगी। आप जानते हो एक महिला समाज में रहती है तो उनके तो मानसिक तनाव बना ही रहता है। आज महिलाएं मानसिक तनाव का भी सामना कर रही हैं, जैसे काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और समय की कमी उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच और आराम जरूरी है, जो आज की महिलाओं को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट,

0: यानी योग और ध्यान के द्वारा भी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि ध्यान यानी मेडिटेशन तनाव कम करता है और हमारे मन को शांत भी रखता है। ये सारा करने के बाद भी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें समय समय पर हमारे स्वास्थ्य की जांच कराना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है, इस पर बातचीत करते हैं। कई महिलाएं बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन समय पर जांच से बीमारी का पता जल्दी चल सकता है और उसका इलाज भी संभव है। इसलिए नियमित ब्लड टेस्ट और स्वास्थ्य जांच जरूरी है। इसमें ही एक विशेष बात आती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी ये सब बहुत बहुत जरूरी होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन और नियमित जांच बेहद जरूरी है। इस समय माँ का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के विकास से जुड़ा होता है, इसलिए हमें जब भी महिला गर्भवती होती है तो बच्चे के साथ साथ उस महिला का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमें गांव-गांव जाना होगा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना होगा। इसमें हमारा अगर परिवार समाज भी सहयोग करे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। यदि परिवार महिलाओं को आराम, अच्छा भोजन और सम्मान देगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियां का बोझ नहीं बल्कि सहयोग और देखभाल भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त प्रियंका गुप्ता, गांव है मेरा बालोती। जिंदगी के सफर में कभी कभी अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, या फिर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि अपनों का साथ छूट जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, उनके गुजारे का क्या, क्या कहता है हमारा कानून? तो आज हमारे कार्यक्रम की विषय है भरण पोषण का अधिकार। अब सबसे पहले आता है कि भरण पोषण आखिर है क्या। कई लोग होते हैं तो वो इस बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, कानून की नजर में भरण पोषण का मतलब सिर्फ खाना, कपड़ा या छत देना ही नहीं है। इसका मतलब है कि आश्रित व्यक्ति के सम्मान के साथ आप जीवन जी सके और उसके स्तर के अनुसार उसे सुख सुविधाएं मिले। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के माइंड में सबसे पहले आता है। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि किसे मिलता है यह अधिकार। सबसे जरूरी बात है, यह हक सिर्फ पत्नियों को ही नहीं बल्कि हमारे घर के बुजुर्गों, जैसे कि माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, उनमें जैसे नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी प्राप्त है। लेकिन ये सबको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। वो है, इसके लिए कानून क्या कहता है? तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, CRPC की धारा 125, CRPC की धारा 125। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या फिर माता पिता का भरण पोषण करने से मना करता है या उन्हें छोड़ देता है, तो वे कोर्ट से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं, जैसा कि आज करते भी हैं। अगर जिनको नॉलेज रहती है, इस बारे में जानकारी रहती है, तो वो इस कानून की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। इसके तहत माता पिता को अपने बच्चों या वारिसों से गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं और यह एक जो फास्ट ट्रैक प्रक्रिया है जो भी आज कई लोग करते हैं। अब इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश के बावजूद भरण पोषण की राशि नहीं देता है या फिर उनकी इस सेवा को पूरा नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसा हम कर सकते हैं ताकि हमें भी हमारा भरण पोषण अच्छी तरह से मिले। भरण पोषण का अधिकार। भारतीय कानून में महिलाओं, बच्चों और वृद्ध माता पिता को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने वाला एक मौलिक कानूनी अधिकार है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार के जितने भी आश्रित सदस्य हैं वो किसी भी स्थिति में बेसहारा ना रहे और उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिलती रहे। जैसे कि आप देखने को मिल रहा है ना, जैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं या हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग हो गया है, तो हम उनको इधर उधर करने की सोच लेते हैं, तो वो भी हमारी जीवन में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन। इतना सही।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो DS पर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
4: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ऋषि मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो DS बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीणा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए, ये बिंदु स्कूल अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये? कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान 11, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेले, आउटडोर खेल, फुटबॉल कबड्डी दौड़ना। 12, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। 13, संतुलित और घर का खाना, फल सब्जियां दूध अंडा अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने, सप्ताह में कम से कम 1 दिन बच्चे के साथ पूरा समय बिताएं। 21, पुस्तक पढ़ने की आदत, स्क्रीन की जगह किताबें, कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 22, समूह गतिविधियां, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, कला क्लब, अकेलेपन को दूर करें। 23, स्कूल और

0: घर का सहयोग, अभिभावक शिक्षक मीटिंग में शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा, 24 आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं को सराहे, गलतियों से सीखें, 25 प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ लगाना, पार्क में समय बिताना, पक्षी पशु देखना, मन शांत और मजबूत होता है। ऋषि मीणा कहते हैं, दोस्तों आज का बालक कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कल हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और खुशहाल होंगे। याद रखें, बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारी जीवन शैली उन्हें कमजोर बनाती है। DS बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से ये संदेश जनहित में जारी किया गया है। अपने विचार हमें बताएं, कॉल करें या मैसेज करें। रेडियो DS, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ समाज।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: बनके।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:50 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइंस, दोस्तों हमारी स्टूडियो लाइन कॉलिंग खुल चुकी है। आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थान 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है जी 8:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो बहन, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है बंदिश और गाने के बोल है मेरे होश ले लो दीवाना बना दो।
0: ओके सर।

0: रखी है इस वक्त, तो उसके मैं जल्दी चला दूँ।
1: नमस्कार
2: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी का कई दिन का गैप हो गया है, आपसे वार्तालाप नहीं हुई थी।
2: सर वो मैं छुट्टी पर चली गई थी, थोड़ा तबीयत।
3: अरे वाह, स्वागत है, अभिनंदन है, आप छुट्टी पर आ गई हैं।
2: हाँ सर।
3: और दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चल रही हल्ले हल्ले।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना
3: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।

0: अरे बाबू खान,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरी जान ना जुल्फें खोलो।
1: गंगा पर ये गाना।

0: क्या है आपका?
1: मेरा नाम पायल जागा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लंबा रखे बाढ़ छाती तक रखे डी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना। हेलो,

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: मतलब ग्रेजुएशन।
3: हेलो
2: हेलो मैम।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: सागर मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: दीवाने।
3: दीवाने।

0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा सुनना चाहोगी?
1: सावली सलोनी देवी जी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ अभी जी से।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो जबरदस्त रहा है।
0: कौन सा गाना सर?
1: रेडियो डीएस को सप्रेम रेट है, लिखो।
0: हाँ जी बताइए।
1: दूर नहीं जा सकती।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आर्यन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मीणा जी की मीणी आ गई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: रेडियो डीएस। मैं सुबह के ठंड से कम और बॉस की बातों से ज्यादा परेशान रहता हूँ। चार दिन पुरानी बात है यार, मैं किसी पर्सनल रीजन से परेशान था। तो बॉस कहता है आगे और कैबिन में घुस गया बिना नॉक के कि यार मुझे बताओ ना, मुझसे बातें करो, मैं हल बताऊंगा, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की, जब तक बातें बताओगे नहीं सॉल्व कैसी होगी। अब आज सुबह की बात है, बॉस खुद ऑफिस लेट आया। मैंने पूछा आप आए क्यों नहीं, कहते मैं घर पे लॉक हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे बताते। तो बॉस कहते क्या हो जाता उससे, मैंने कहा मुझसे कम्युनिकेट करते तो सलूशन मिल जाता। बॉस कहते यार तुम चाबी कैसे ढूंढते। अरे बॉस कम्युनिकेशन इज द की, पर आप कहीं मत जाओ। बैक टू बैक आपके लिए मैं 5 गाने प्ले करने वाला हूँ, ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: गंगापुर स्थिति की धरतर
1: हाँ थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रहेगा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले दाएं वाले पीछे वाले किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6 क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: आपको स्थिति की धड़कन
1: ट्यून इन कर रखा है अपनी 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप, लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो।

0: हमारे सारे दुख का कारण है हमारी खुद की आकांक्षाएं। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे हैं आप सब लोग? नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हर दिन की तरह आज भी हम अपने आप में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं भगवत गीता जब पढ़ रही थी तो मैंने एक चीज देखी। अपनी पूरी बात कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम ही जानो। मैं अपनी कोई बात तुम पे थोपूंगा नहीं। और सोचिए, यही हम लोग मात खा जाते हैं। हमने अगर किसी को कुछ समझा दिया तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने ही माने। यहीं पे अगर हमने सामने वाले को फ्रीडम दे दी, अगर उसको उसके हिसाब से रहने दिया, तो शायद वो हमारी बात जरूर मानेगा। सोच कर देखिए। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां बहुत सही वक्त है अपने आप को हेल्दी रखने का। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। देखो, गर्मियों में तो हम लोग विटामिन डी नहीं ले सकते, यानी कि सूरज के नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन सर्दियों में हमारे पास में मौका है जिसको हमें गंवाना नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ा सा तिल का तेल है ना, तो अपने घुटनों पे, अपने बालों में, अपने सर पे आप तिल का तेल लगाकर बैठ सकते हैं। इससे जिस भी प्रकार के दर्द आपको होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अगर घुटनों में दर्द रहता है या कोई घर में बड़े बूढ़े हैं या खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई है तो भी तिल का तेल आपके बहुत काम आएगा। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें और धूप में जरूर बैठें। केवल सर्दियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाएगी। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: इस काल का।
1: जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं हूँ आरजे खुशी और मुझे ऐसा लगता है जब भी हमको मौका मिले ना छोटे बच्चों के साथ में खेलने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खुल के जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ तले हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और केवल सोचा विचारे करते करते हम लोग जीना भूल गए हैं। तो जब भी मौका लगे अपने आसपास वाले बच्चों के साथ में जरूर खेलें। ये आपको अंदर से बहुत यंग फील कराएगा, यानी कि आप अपने अंदर के बच्चे से मिल पाएंगे। ये आपको खुशी भी देगा और जब आप मन से खुश होंगे ना तो ये आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आजमा कर देखिए। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: रेडियो डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: रेडियो DS
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, जो सन 1960 में आई थी। इस गीत में मीना कुमारी राजकुमार के साथ अपने खामोश प्रेम के खो जाने का ताना नादिरा जी को इस तरह देती है। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की टीम ने इस गीत को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया है कि आज भी पिकनिक के लिए ये पसंदीदा गीत माना जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: सालों पुराना ये गीत दो बातों को गलत साबित करता है। पहला, मीना कुमारी अच्छा डांस नहीं कर सकती, और दूसरा, लता मंगेशकर अपनी बहन आशा की तरह मस्ती भरे गीत नहीं गा सकती। 89.6 DSFM पे आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका स्वागत है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप एक कॉफी का मग लेकर खड़े हैं और अगर आपसे कोई टकरा जाता है और कॉफी छलक जाती है तो प्रश्न उठता है कि कॉफी क्यों छलक गई। उत्तर होगा क्योंकि कोई आपसे टकराया होगा, या शायद आप लड़खड़ा गए होंगे, या आपने कॉफी का मग ढंग से नहीं पकड़ा होगा। लेकिन सही जवाब है कि प्याली में कॉफी थी तो वही छलकेगी, यानी प्याले के भीतर जो भी होता है वही छलकता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में कभी हालात हमें इस तरह के झटके देते हैं तो जो हमारे मन में होता है ना, वही बाहर छलकेगा। अगर हमारे मन में नाराजगी है, गुस्सा है, तो नाराजगी और गुस्सा छलकेगा। असंतोष है, ईर्ष्या है, तो वह छलकेगी। अगर किसी के प्रति आभार है तो वो छलकेगा। इसीलिए हमारे जीवन के प्याले में हमें हमेशा सहानुभूति और आभार भरना चाहिए, क्योंकि अगर यह छलकेगी तो आसपास सुकून और शांति रहेगी। मैं तनीषा 89.6 डीएसएफएम पे आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। जिंदगी कभी हैरान करती है, कभी परेशान करती है, कभी नाउम्मीदी में भी रखती है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में जिसने ढलना सीख लिया, खुशियों ने बस उसी का साथ दिया। हमें असल जिंदगी के मायने तब समझ में आते हैं जब हम हर एक अंधेरे में उजाले का पैगाम देखते हैं। 89.6 डीएसएफएम लेकर आता है आपके आंगन में खुशियों की दास्तां।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: समाज को अच्छा बनाने के लिए हमें खुद को अच्छा बनाना होता है। मैं हूँ आरजे खुशी। नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो, और हर सुबह की तरह आज भी मेरी सोच यही है कि मुझे अपने आप में एक थोड़ा सा बदलाव करना है, लेकिन अकेले नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर। आज मैंने ये पढ़ा कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी सहायता करता है। यानी कि मान लीजिए आपको पैसे चाहिए, तो आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर दीजिए जिसको आर्थिक सहायता की जरूरत है, उससे आपकी भी मदद जरूर होगी। तो ये मत सोचिए कि किसी की मदद करके आपके पास से कुछ कम होगा, क्योंकि जब भी आप किसी की मदद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में वो चीज बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं ना, तो जब ठंड होती है और मैं गरीबों में अपने कपड़े दे देती हूं ना, तो मुझे हर बार लगता है कि मेरे पास उतने ही कपड़े वापस आ जाते हैं। कहां से कैसे ये समझ नहीं आता, लेकिन मेरे पास से कभी कुछ खत्म नहीं होता। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: ये जो तेल होते हैं ना, ये वरदान होते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी, और सर्दियों में एक तेल ऐसा है जो आपके जोड़ों के दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल अगर आपके घर में है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घुटनों पे लगाने के लिए, या फिर अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं या काले धब्बे आपके पड़ गए हैं चेहरे पर, या फिर कहीं भी आपके जैसे घुटनों का रंग काला है या कोहनियों का रंग काला है, तो उसको साफ करने में आपकी मदद करेगा बादाम का तेल। इनफैक्ट रिलैक्सेशन थेरेपी में भी ये काम लिया जाता है, यानी कि जब आप बहुत थक गए हो, आपको रिलैक्स करना हो, तो पूरे शरीर में बादाम के तेल की मालिश करके कुछ देर सो जाएं और फिर फर्क देखें। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सेहत बढ़िया रखनी है ना तो सुबह का नाश्ता सबसे बेहतरीन किया कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी। हम लोग उल्टा कर देते हैं, सुबह हम लोग हल्का फुल्का खाते हैं और पूरा दिन फिर हम बहुत भारी भारी खाना खाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। सुबह हम लोगों को एक हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उसके बाद में लंच उससे थोड़ा सा लाइट और डिनर एकदम लाइट, और करते हम लोग बिल्कुल उल्टा है। एक बार ये बदलाव अपने अंदर करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आप कितना ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।